असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए।

जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जापै जाए।

0: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
1: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या कैटरिंग रागसन
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
4: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02033736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड Mantra Holidays व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्र
5: Celebrate Diwali with Chalo Let's Go and Chai Chopal. Diwali Gala 2026.
0: Saturday 31st October at the Conference Suite West Bromwich. Enjoy a vegetarian feast, live entertainment and family fun.
5: Adults £30, children aged 5 to 12 just £15 and under 5s go free.
0: Book now at diwaligala2026.eventbrite.co.uk. For sponsorship call Rakesh on 07436 594 323.
5: Sponsored by
0: Garg Solicitors, award-winning nationwide jewellers Diamond Heaven, ICNW Limited and SBI UK.
5: Radio partner Leica Radio.
6: Save the date. Leica Radio brings you our first ever New Year's Eve bash. Leicester, 31st of December.
7: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
6: It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio. Leica Radio in Birmingham is a part of Leica, London's number one Asian commercial radio group. This is Leica Radio across the Midlands.

good morning. मनोरंजन कार्यक्रम में खुशामदीद। स्वागत है आपका संगीत की इस महासागर में। गोते लगाइए और खुशियां पाइए। माय नेम इज रवि शर्मा और बहन भाइयों दोपहर बाद 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। आज बुधवार वर्ष 2026 के अक्टूबर महीने की 14 तारीख और वक्त हो गया है हमारी आपकी मुलाकात का, यानी 10:05 हुआ चाहते हैं। और आज भाई संवत 2083 के आश्विन मास की ये नवरात्रों में चतुर्थी

0: आइए। अगर आप भाई रात मंदिर गए हैं या किसी कम्युनिटी सेंटर में कहीं आपने भगवती की आराधना की है, माँ भगवती को धन्यवाद दें कि उसने हमें ये मौका दिया। और भाई आप सबके घरों में सुख शांति हो, आनंद की स्थापना हो, खुशियां हो, यही कामना।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Happy Navratri from Leica Radio and Leica Gold.
0: Happy Navratri, aur bhano bhaiyo girja sant samagam samana labh kachu an बिनु हरि कृपा के हो वही ना ये गा वही वेद पुराण। यानी भाई जो सत्संग प्राप्त होता है, जो भजन कीर्तन कथा डांडिया गरबा नृत्य, ये भाई बिना उस भगवती की कृपा के प्राप्त नहीं होता है। धन्यवाद उसको, उसने हमें इस चीज से, इस सात्विक आयोजन से जोड़ा।

0: कल भाई किशोर जी की वो पुण्यतिथि मनाते हुए हमने इतने गीत किशोर कुमार के बजाए कि वो नशा अब तक तारी है। हम लगाते हैं गाना आशा भोसले का तो निकलता है किशोर कुमार की आवाज में।
1: अब तो
0: हाँ
1: हुआ पुराना किस्सा
0: जी।

0: इंसाफ की बात करते हो भाई, स्क्रीन पर लिखा था आशा भोसले, अरे भोसले नहीं आशा लिखा था, बाद में पता लगा भाई आशा जी का गीत नहीं, आशा फिल्म का गीत है शर्मा जी। ये अभी तक आप, ये आपकी आवाज से लगता है कि रात भर आप जागे हैं। अंदाज से भी लगता है कि कुछ खोए खोए हैं, स्टूडियो में आके सोए सोए हैं। बोले जी आप रात को सोते नहीं? भाई रात को आजकल तो बहुत सारे लोग नहीं सोते, तो फिर आप नींद पूरी कैसे करते स्टूडियो में आके? ये इंसाफ कहाँ का है। बैक टू बैक संगीत सुनवाते हैं कार्यक्रम को शुरू करते हुए हम, और आगे बढ़ते हैं भैया आपको, पहले तो वो जो एशियन मीडिया अवार्ड्स है ना, उनकी याद दिलाते हैं आपको।
1: Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं भाई, पैसे अगर भारत भिजवाने हो अपनों को तो रेट अब भी अच्छे चल रहे हैं। आज का रेट एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 125.7 इंडियन रुपीज, 125 रुपए और 70 पैसे। यू कैन ट्रांसफर बाय ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप, पर भूलिएगा नहीं शर्त लागू है।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Make your celebration special with Falcon Festive offers.
3: Elephant Medium Atta, 25 kilos, just $13.79. Laila Gold Basmati Rice, 10 kilos, only $12.99. Bikaji Namkeen, 200 grams, pick up 2 for just 1. And Tilda Pure Basmati Rice, 20 kilos, $32.99 with a free case of KTC Chickpea Tins.
2: And shopping ke saath paye Star Tours ke holiday packages aur Mala बार गोल्ड एंड डायमंड्स की तरफ से गोल्ड कॉइन्स जीतने का मौका। फाल्कन कैश एंड कैरी, विजिट 82A साइस्टन स्ट्रीट, लेस्टर, LE12JU, 2A रोलेट्स हिल, लेस्टर, LE54UN, और फाल्कन सुपरमार्केट, 135 कार्लटन रोड, नॉटिंघम, NG32FN। हैप्पी दिवाली।
4: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
5: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
6: Dubai is the place. 11,
5: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
6: Danu 11, 11. Danu Properties.
7: कभी सोचा है 10 साल में एक बार भी मिलना मुश्किल हो?
8: Catch Dil Chata Hai on its 25th anniversary at 2 PM this Sunday at your nearest Showcase Cinema.
9: शादी करने के लिए किसी से प्यार करना बहुत जरूरी है, तुम्हें क्या लगता है?
8: Exclusive radio partner Leica Radio Network. Log on to showcasecinemas.co.uk/SAFFUK.
5: Celebrate Diwali with Chalo Let's Go and Chai Chopal Diwali Gala 2026.
2: Saturday 31st October at the Conference Suite West Bromwich. Enjoy a vegetarian feast, live entertainment and family fun.
5: Adults £30, children aged 5 to 12 just £15, and under 5s go free.
2: Book now at diwaligala2026.eventbrite.co.uk. For sponsorship call Rakesh on 07436 594 323.
5: Sponsored by
2: Garg Solicitors, award winning nationwide jewellers Diamond Heaven, ICNW Limited and SBI UK.
5: Radio partner Leica Radio. London, get ready for an unforgettable night.
10: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
5: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
10: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
5: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
10: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
5: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.

क्या सुनवा रहे हैं शर्मा जी? ठीक सुनवा रहे हैं शर्मा जी, क्योंकि शर्मा जी को पता है कि आज भाई बुधवार है और बुधवार को क्या होता है, शरारती।

0: कार्यक्रम शुरू होता है और भाई घड़ी पर नजर गई तो पता चला कि खबर गई नहीं, अभी नहीं गई है, खबरों का समय हो गया है। खबरों में भाई एक तो चर्चा उस व्यक्ति की है जो टाइगर के भाई पिंजरे में एंटर कर गया, तो मतलब उसके इलाके में एंटर कर गया, और हालांकि बैरिकेड मतलब अच्छी तरह से सुरक्षित वो बनाया जाता है उसके लिए, परंतु वो एंटर करके और फिर उसके साथ बतियाने लगा और भाई वो फिर उसका शिकार हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। टाइगर ने उसको झिझोर डाला और अब पता चल रहा है कि वो मानसिक रूप से विकसित था, मतलब थोड़ा सा दिमागी तौर पर कमज़ोर था, और भाई ऐसे में उसको कुछ जो इलाज चल रहा था वो मेडिसिन भी ऐसी दी गई थी कि वो ये हरकत कर बैठा और भाई ज़िंदगी खो बैठा। इस पर चर्चा हो रही है, विचार हो रहा है, हालांकि कई दिन तक उसे बंद रखा था और उस भाई टाइगर को इंजेक्शन दे करके मारने का प्रोग्राम भी जो है वो नहीं रखा गया था, क्योंकि उसकी गलती नहीं थी, वो उसका काम है, उसकी नेचर है ऐसी, उसके नज़दीक नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो भी मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं था। ये खबर है, और क्या क्या खबरें हैं लीजिए, समय हो गया है, देखते हैं क्या।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
0: लाइका रेडियो नेटवर्क का आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। भाई अंग्रेज क्रिश्चियंस के धार्मिक प्रमुख पोप के फेफड़ों का इलाज हुआ है, वो फेफड़ों के कैंसर से ग्रसित थे, डायग्नोस हुआ और उस पर फिर उसका उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अमेरिका से आने वाली खबरों में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐलान सामने आया है ग्रीनलैंड को लेकर के, बताते हैं। राजस्थान के फॉर्मर एमएलए की हत्या के मामले में एसएचओ सस्पेंड, कई अन्य के खिलाफ एक्शन। और बिहार में एक नाव पलटने से कम 13 लोगों की मौत हुई है, भारत से आने वाली खबरों में यह खबर छाई हुई है। अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। बिहार के वैशाली जिले में राघोपुर थाना क्षेत्र के तहत मंगलवार रात को कल गंगा नदी में नाव पलटने से कम 13 बच्चों की मौत हो गई है। इस घटने पर जिला की डीएम वर्षा सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 13 डेड बॉडीज बरामद हुई हैं, जिनमें से 9 बच्चियों और 4 बच्चों की डेड बॉडी शामिल है, सबकी उम्र 15 साल से कम बताई जा रही है। इंटरनेशनल खबरों में यूक्रेन में लाखों लोग बिना बिजली के, जेलेंस्की ने रूस पर इसका इल्जाम लगाया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने रात भर राजधानी कीव और खारकीव में एनर्जी और कुछ इंपॉर्टेंट बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया है। जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने 39 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 120 से ज्यादा हमलावर ड्रोन और हथियारों का इस्तेमाल किया। भारत से आने वाली खबरों में एसआईआर के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये भाई आईएसआर उन लोगों को ढूंढकर जो कि घुसपैठ करके देश में किसी तरह से बिना उचित वीजे के या उसकी एंट्री करके और फिर वहां देश की वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं या किसी तरह से उन्होंने वहां पर ठिकाना बना लिया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई का लॉ है। बार एंड बेंच के मुताबिक ओवैसी ने जो ये कानून बनाया गया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका दाखिल की है। सौरभ दास और आशुतोष रांका के जेल जाने पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन की कोशिश करने वाले न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। काकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष और सौरभ दास को लेकर के अभिजीत दीपके जो काकरोच पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है कि मुझे याद है कि आखिरी बार किसी हिंदुस्तानी को पब्लिक प्लेस पर तिरंगा फहराने के लिए अंग्रेजों के शासनकाल में जेल भेजा गया था, अब ये सरकार ऐसे लोगों को जेल भेज रही है। उन्होंने लिखा कि सौरभ और आशु जानते थे कि उन्हें जेल में डाला जा सकता है, पर फिर भी वे जंतर मंतर गए और उन्होंने बड़े फख्र से अपना राष्ट्रध्वज फहराया। हाईजैक की संदिग्ध धमकी के बाद सस्पेक्ट थ्रेट के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्रैंकफर्ट से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद जयपुर डायवर्ट कर दिया गया और पता चला है कि इस हवाई जहाज की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अधिकारी एयरपोर्ट पर पहुंचे, बताया कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2030 को हाईजैक की सस्पेक्ट धमकी के बाद सुरक्षित तरीके से जयपुर उतार लिया गया और सुरक्षा जांच की गई, सब ठीक ठाक था फिर भी, और अब धमकी की जांच चल रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड में बड़े पैमाने पर तेल, गैस और खनिजों की खोज जल्द शुरू होने वाली है। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहां आसानी से अवेलेबल जो तेल की मात्रा जो है क्वांटिटी दुनिया के लगभग किसी भी दूसरे भूभाग से कहीं ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका और यूरोप दोनों की रक्षा और आक्रामक फौजी कार्रवाई के लिहाज से इसका स्ट्रेटेजिक महत्व जो है, इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बेजोड़ है। अमेरिका पर भविष्य में होने वाले किसी भी हमले को ग्रीनलैंड के रास्ते से ही गुजरना होगा, इसलिए ग्रीनलैंड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भरतपुर यानी राजस्थान का ये जिला है, उसके बयाना से बीजेपी के विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रहे अतर सिंह भड़ाना की इस संडे को हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सरकार ने कल 3 पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की है। 11 अक्टूबर को हुई एक हिंसक झड़प में उन्हें पीट पीट कर मार दिया गया था। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कल शाम की कानून व्यवस्था को लेकर के एक हाई लेवल बैठक बुलाई थी, उसके बाद आदेश जारी करके 3 SSP, 4 डिप्टी SP और SHO पर कार्रवाई की है। राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर पीसफुल प्रदर्शन में तिरंगा लहराने की बाद 2 व्यक्तियों को जेल भेजे जाने के बाद उन्होंने कहा है कि ये एक कायरतापूर्ण काम है। इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पोस्ट के माध्यम से टिप्पणी की है। मुंबई में नाला सुपारा इलाके में एक बहुमंजिला यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लगने से इमारत में कई लोग फंस गए हैं। इनमें एक बुजुर्ग और एक महिला की मौत भी हो चुकी है। वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर पृथ्वीराज बीपी ने कहा है कि वसई विरार महानगर पालिका में अचोले एरिया में इंपीरियल हाइट्स बिल्डिंग में रात करीब 11:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। बिहार के राधोपुरा दियारा में एक नाव दुर्घटना में लोगों की मौत पर केंद्रीय मंत्री और लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चिराग पासवान ने शोक जताया है। उन्होंने लिखा है कि मेरे पार्लियामेंट्री इलाके में राधोपुरा दियारा में हुए नाव हादसे में कई लोगों की मौत बेहद दुखद है और मैं परिवारों को हार्दिक संवेदना भेजना चाहता हूँ। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा है कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो 17 से 22 अक्टूबर तक उज्बेकिस्तान और भारत के दौरे पर रहेंगे। मार्को रूबियो भारत में मुंबई और जामनगर की यात्रा करेंगे। पोप लियो को लंग कैंसर होने की पुष्टि, वेटिकन ने दी सर्जरी के बारे में ये जानकारी। वेटिकन ने एक मेडिकल बुलेटिन में कहा है कि पोप लियो को फेफड़ों का कैंसर होने का पता चला, लेकिन उनके दाहिने फेफड़े के निचले हिस्से को निकालने के लिए की गई सर्जरी कामयाब रही है। 73 साल पोप की कल रोम के जेमेली अस्पताल में 90 मिनट की सर्जरी हुई और इसके बाद उनमें जो फेफड़ों का एडेनोकस निवा जो कहा उसका पता चला और कहती हैं उनका ऑपरेशन कर दिया गया, कामयाब रहा, इसमें कोई मुश्किल नहीं आई। और ईरान की IRGC नेवी के कमांडर ने कहा है कि वे हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी बेड़े का इंतजार कर रहे हैं ताकि हमला करके उसे डुबो सकें। आइए हम देखेंगे। IRGC की इस वार्निंग के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ईरानी नेवी कमांडर के पास नौसेना बची ही नहीं है। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया था, उस हमले के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रगल लगातार चल रहा है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: This is Leica Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

भाई ये सुलगती हुई आग अच्छी नहीं होती, धुआं निकलता है पर ताप नहीं मिलता, थोड़ा सा डांस कर ले तो पसीना आए। ये सुलगती आंखें कब से सुलग रही है, पानी डालो। अरे पानी डालो भाई और डांस शुरू करो।

0: बल्ले बल्ले हो गए भाई रफी साहब आशा भोसले और साथियों की आवाज में ये गीत आपने सुना
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स गुडनेस इन एवरी बाइट ट्राई इट टुडे अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर
2: ये है लाइका रेडियो हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ऑल ट्रैवल
0: वेल साउथ ऑल ट्रैवल का पैगाम भाई दुबई जाने की इच्छा रखने वाले लोगों के नाम साउथ ऑल ट्रैवल्स अफोर्डेबल दुबई ऑफर कंबाइंस एक्सक्लूसिव डील्स एट सेलेक्टेड पार्टनर्स होटल्स विद डायरेक्ट फ्लाइट विद एमिरेट्स फ्रॉम जस्ट £629 पर पर्सन फॉर थ्री नाइट्स लेकिन भाई ये 10 दिसंबर से पहले पहले ये ऑफर जो है बरकरार है इसका फायदा उठाइए कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02088434444 और विजिट southhalltravel.co.uk
2: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
3: ये है
4: Leica Radio.
5: Make your celebration special with Falcon Festive Offers.
6: Falcon Chakki Atta 10 kilos plus Suhana Basmati Rice 5 kilos, both for £11.99. Falcon Red Lentils 1.5 kilos, 2 for £3.50. Falcon Broken Cashew Nuts 600 grams, just £2.99. Sunfeast Dark Fantasy Biscuits 150 grams, only 99 pence each. And Samara Premium Tea 1 kilo, £3.99.
5: Aur shopping ke saath paye Star Tours ke holiday packages aur Malabar Gold and Diamonds ki taraf se gold coins jeetne ka mauka. Falcon Cash and Carry. Visit 82A Syston Street, Leicester, LE12JU, 2A Rowlett Hill, Leicester, LE54UN, or Falcon Supermarket, 135 Carlton Road, Nottingham, NG32FN. Happy Diwali!
7: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: I can't wait for our holiday. Sun, sea, no work.
2: Same, but how are we supposed to use our phones abroad? Roaming costs a fortune.
1: Not with Simzy. You get data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
2: And I can keep my number for WhatsApp and bank OTPs. Exactly. Plus, it's flat rate, so no bill shock and you're ready in just 3 minutes.
1: Brilliant. And there's 10% off with Roam Free 10.
2: Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
3: Listop નવરાત્રીની ધમાકેદાર રાતો માટે થઈ જાઓ રેડી. KDR Events and Beach Promotions proudly presents Navratri Festival 2026. 11th to 20th October, live from India. Garba, Dandiya, music and a full-on festive vibes. Every night from 7 PM at Avanti Field School, Listop. Tickets just £5 the start. Book your tickets now on Ticket Source or call BJ 07957-477-330. Radio Partner, Leica Radio.
4: Fancy winning something tasty on the side?
5: Order at Pepe's through the app and you could win tech vouchers instantly. And there's more.
4: Every order enters our monthly prize draw to win a gaming bundle, a brand new console, wireless headset, gaming chair, smart speaker and mini fridge.
5: So order your Pepe's flame grilled, piri piri, Pepe-licious flavour and you could win big.
4: Pepe's. Win big. T&Cs apply.
6: Diwali is approaching and is your business ready? Sadia Wholesale has your Diwali essentials covered, so stock up and get ready to celebrate. Get in touch today, info@sadia.co.uk or give us a call on 0203-048-4848. On behalf of Sandia Wholesale, happy Diwali.
7: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
8: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
9: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
8: From Helsowen to Harborne, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands.
10: Leica Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGoon.com.
11: Oh, Mangal, Buddh, Veer, Shukr, Shani, Itwar. 7 days mein hansna chahiye. कम से कम 700 बार.
12: 7 दिनों में हंसना चाहिए भाई, अगर हंस सके तो. एक से कहा कि भाई हंसिए, मुस्कुराइए, ठहाका लगाइए. बोले भाई साहब आपकी बात हो रही, हम तो शादीशुदा हैं. मतलब शादीशुदा नहीं हंस सकते भाई. बात तो सही है, क्योंकि जो फरमाइशों का दौर होता है ना पत्नी का, आपको कभी सामना करना पड़ा है? मेरा मतलब है, मैं वैसे हमेशा पत्नियों की साइड लेता हूँ, लेकिन भाई उनके पतियों के सामने तो उनकी साइड नहीं ले सकता ना, आप समझते हैं ना. मेरी अपनी पत्नी मुझे अक्सर, जब भी मैं कहीं जाता हूँ ना, तो जैसे मैं वो कुंभ को कवर करने के लिए बनारस गया था, वाराणसी, काशी जी, हाँ, तो भाई 10 दिन का दौरा था. आपको याद होगा वहाँ से मैं लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था जब कुंभ चल रहा था है इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में. तो भाई वहाँ से ब्रॉडकास्ट करता, जब मैं निकलने लगा, पत्नी की वही फरमाइश, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा वाराणसी, रेडियो की तरफ से जा रहा हूँ कवरेज के लिए. तो कहने लगी बनारसी साड़ियाँ लाना मत भूलना, कहीं भी जाओ. मैंने कहा आज कहाँ जा रहे हो? मैं क्या, शेफील्ड का दौरा है, शेफील्ड जा. अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ के यूटेंशियल बड़े मशहूर हैं, लाना मत भूलना घर के किचन के बर्तन वगैरह. भाई कहीं भी जाओ. एक दिन मैंने देखा, मुझे बुलाया था यहाँ पर ब्रिटेन में जो इंडियन डॉक्टर्स एसोसिएशन है उसके जो साइकेट्रिस्ट कहेंगे ना, जो दिमागी तौर पर कमजोर लोगों का इलाज करते हैं, इतने सारे डॉक्टर हैं भारत के यहाँ उस खाली उस डिपार्टमेंट के उस सब्जेक्ट के, क्या भाई उनकी अपनी एक एसोसिएशन है। उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया स्टेज पर थोड़ा उनका दिल बहलाने के लिए। देखा वो पागलों का इलाज करते हैं, हम उन डॉक्टरों का इलाज करते हैं मतलब उनको हंसाते हैं। और साहब उन डॉक्टर्स के प्रोग्राम में जाने लगा तो पत्नी पूछती कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा कि साइकेट्रिस्ट के एक कार्यक्रम में जा रहा हूँ थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए उनके लिए। तो कहने लगी, सोच में पड़ गई, मैंने कहा देखता हूँ क्या कहेंगे आज, दवाइयाँ लेते आइएगा झट कहती है ठीक है जा ही रहे हो तो अपना चेकअप कराते आइएगा फरमाइश तो फरमाइश है भाई, कुछ भी हो सकती है।
13: Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
12: अब साहब करेंसी रेट सुन लीजिए, LemFi वाले दे रहे हैं एक पाउंड के बदले इन इंडियन करेंसी 126.16 रुपीस, पाकिस्तानी 366.77, श्रीलंकन 439.05, बांग्लादेशी टके दे रहे हैं 163.81 एंड मॉरिशन रुपए 63.14।
13: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
10: Manoranjan with Ravi Sharma.
14: Leica Radio.
13: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
12: Well, the gold is sold at the rate of 100.45 pounds per gram. हमारे एक दोस्त हैं भाई स्लाव में, पमी जी कहते हैं एक ग्राम की कीमत बताते हो, शर्मा जी सोने का भाव ऐसे मत बताया करो, ये इस रेट में कहते थोड़ी गरीबी झांकती है, आप बताओ किलो के हिसाब से एक किलो सोने का रेट क्या चल रहा है ये बताओ।
13: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116-266-4278.
15: Win big this Diwali.
16: Get ready for shopping, celebrations and fantastic prizes at the Leicester Diwali Shopping Festival.
15: Win two return flights to Istanbul from Home and Away Holidays, an annual subscription to Z5 from ZTV, a year supply of Disha Premium rice, atta or cooking oil and much more.
16: To enter, follow Disha Premium, Home and Away Holidays and Leicester Diwali Shopping Festival on Instagram.
15: Download the Z5 app and use the code Diwali3M on the quarterly pack to get a month free. Show it at the entrance for your free raffle ticket.
16: Sunday, 1st November, 12 till 8 at the Ram Garia Centre, Leicester. Good luck and see you there. Exclusive radio partner, Leica Radio.

Welcome to the second part of the Manoranjan program on Laika Radio Network. Laika Gold ke karyakram aap sun rahe hain. My name is Ravi Sharma. दोपहर बाद एक बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ और बहनों भाइयों इस समय प्रस्तुत करना चाहता हूँ थॉट फॉर द डे. आज का विचार जिसके लिए आलेख हमें भिजवाया है वेस्ट लंदन से, नाम है उनका रश्मि कांत बग्गू भाई पटेल. ये पटेल साहब नाम है कि इसमें एड्रेस भी शामिल है, इतना लंबा भाई. दरअसल क्या है कि पिताश्री का नाम भी साथ जुड़ा होता है गुजरात में और भी कई भाई भागों में विश्व के. तो रश्मिकांत बब्गू भाई पटेल लिखते हैं कि रवि जी आज का चिंतन जो है एक प्रेरणा है, निरंतर काम करते रहने का संदेश है. मैं इस उम्र में भी खूब काम करता हूँ और काम मतलब सेवा करता हूँ, और सेवा समझ के ही काम करेंगे ना आप तो एंजॉय करेंगे. कहते हैं कि एक समय की बात है, भविष्य बताने वालों ने भविष्यवाणी कर दी कि इस साल भयंकर अकाल पड़ेगा, बारिश नहीं होगी.

की तरफ जा रहा था, गांव वालों ने रोका, कहां जा रहे हो? उसने कहा, हल चलाने, धरती को उपजाऊ बनाने के लिए जरूरी है। अरे भोले आदमी, इस साल बारिश नहीं होने वाली है, कोई फायदा नहीं है बीज बोने का, कुछ नहीं उगेगा। उसने कहा, फिर भी मैं तो जाऊंगा। आगे बढ़ता गया, फिर लोगों ने रोका, भविष्यवक्ताओं ने रोका, क्यों अपनी मेहनत बेकार करते हो, क्यों इन बैलों को भी गर्मी में परेशान करते हो, इस साल बारिश नहीं होगी, कुछ पैदा नहीं होगा। किसान ने कहा, आप समझते क्यों नहीं, अगर मैं अपना काम छोड़ दूंगा, आलसी होकर बैठ जाऊंगा, पता है अपने काम को अच्छी तरह करने के लिए मेरा निरंतर अभ्यास आवश्यक है, तो अभ्यास समझ के ही। अरे भाई, मैं तो खेती करना ही भूल जाऊंगा, हल चलाना भूल जाऊंगा, एक आदत पड़ी हुई है उसे निभाते हुए, और फिर कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाती है। हल तो चलाना ही है, इस साल नहीं अगले साल भी काम आएगा, धरती उपजाऊ होगी। अब साहब, लोगों ने तो ये बात सुनी, ये काम जरूरी है, अगर हम काम छोड़ देंगे तो काम करने का अभ्यास खत्म हो जाएगा, हम आलसी हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। एक तरह से एक्सरसाइज समझ के काम तो करना है, अपनी आदत समझ के, अपने आप को व्यस्त रखने के लिए, अभ्यस्त रखने के लिए, अभ्यास यानी लगातार एक अभ्यास करते करते जो दक्षता, जो परफेक्शन प्राप्त होती है ना, उसके लिए मैं तो जाऊंगा। किसान जा रहा था, ये बात कहते कहते गांव सुन रहा था, एक्सपर्ट सुन रहे थे, पर ऊपर बादल भी सुन रहे थे, प्रकृति भी सुन रही थी। अगर हम पानी नहीं बरसाएंगे तो हमारा भी तो अभ्यास छूट जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम बरसना ही भूल जाएं, कहीं ऐसा ना हो हम अपना स्वभाव ही बिल्कुल एकदम विस्मृत कर दें। किसान गया, उसने हल चलाया और बादल टूट कर बरसे। व्यस्त रहो, अभ्यस्त रहो, मस्त रहो, काम करते रहो। आलसी देखते हैं किनारे खड़े, पर चलने वाले तो तूफान में भी चल पड़े। चलती रहना ही जिंदगी है, काम करते रहना ही स्वास्थ्य की निशानी है। धरती पुकार के कह रही है, हल चलाओ, मेरे सीने पर बीज बिखराओ, मैं उन्हें प्रफुष्टित करूंगी, मैं उन्हें फलने फूलने का अवसर दूंगी। प्रकृति कहती है, धरती कहती है, काम करो। जितना बने उतना करो।

0: आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए आलेख हमें भेजा हाउंसलो से रश्मिकांत बग्गू भाई पटेल ने। पटेल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रैक्टिकल संदेश, काम करते रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे और अपने काम के लिए अभ्यस्त रहोगे, यानी प्रैक्टिस नहीं छूटेगी। आज के चिंतन के साथ जो गीत हमने आपको सुनवाया, भनवाइयो, दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म दो बीघा जमीन। गाने वाली आवाजें मन्ना डे, लता मंगेशकर और साथियों की थी। और साहब, चिंतन के संदर्भ में बहुत सारे संदेश एज यूजल आ गए हैं हमारे पास। पम्मी भाई कहते हैं, थैंक यू जी फॉर चिंतन एंड द नाइस सॉन्ग, सो नाइस ऑफ यू पम्मी भाई। अर्जुन जी, अनिल सोनी वियाना वाले, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर चिंतन। ही सेज उल्लास टोरंटो में, भाई देखिए वियाना में अनिल सुन रहे हैं, टोरंटो में उल्लास हमारे भाई प्यारे प्यारे लिसनर्स को जोड़ रही है हमारे साथ। वीरेंद्र चौधरी, थैंक यू, आपको सॉन्ग अच्छा लगा। रागनी मानसी जगदीश भूषी में, थैंक यू फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। क्योंकि मैंने देखा इस देश में हैं कुछ लोग ऐसे जो कहते हैं जब हमें घर बैठे पैसे मिल जाते हैं, भत्ता मिलता है, तो फिर हम काम करने क्यों जाए। सिर्फ पैसों के लिए नहीं काम किया जाता, अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी मेमोरी बरकरार रखने के लिए, अभ्यस्त रहने के लिए। अरुणा भूपेंद्र पटेल, थैंक यू वेरी मच। नीला चौधरी जी, सो नाइस ऑफ यू। और देशराज बैसन साहब, भाई आप तो हमारे जो है कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट। हरविंदर जी, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। सूरज राजकुमार जी, सुबह की प्यार भरी राम राम। कपिल वाटफोर्ड में सुनते हैं, और सुनते नहीं है जी, सुनाते भी हैं खरी खरी। किसी दिन आपकी पत्नी ने सुन लिया ना, फिर देखना। पत्नी ने कहा, सुनो जी, मैंने आज घर में नया वाईफाई लगवा लिया है। पति खुश होकर, पासवर्ड क्या रखा? पत्नी, 10 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी ना, पत्नी कह रही है, उस दिन की तारीख डालो। पति, अरे वाह, बहुत रोमांटिक हो तुम, पासवर्ड क्या है? पत्नी कहती है, पासवर्ड है रोंग पासवर्ड। शादी की तारीख, और एक ने उसको समझाया, भाई हम तो समझदारी की बात करते हैं लेकिन सामने से जवाब मिलता है वो ओवर समझदारी का। हमने कहा, देखिए मैडम, ये जो आपने उंगली में अंगूठी पहनी है ना, तो वो कहती है, मेरी शादी की अंगूठी है। हाँ नहीं, अच्छी बात है, लेकिन आपने गलत उंगली में पहनी हुई है, शादी की अंगूठी इस उंगली में नहीं पहनते हैं, गलत उंगली में है ये, आपको क्या? मैडम कहती है, मैंने शादी भी तो गलत आदमी से कर रखी है, इसलिए शादी की अंगूठी गलत उंगली में ही पहनना था। छोड़िए साहब, क्या रखा सच्ची बातों में, वापस चिंतन की ओर। हरविंदर जी, कपिल भाई, थैंक यू वेरी मच। और सुखी सर जी, आई एम, क्या कहते हैं, बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ नहीं, हाँ हाँ सुखी भाई, आज तो गाना लगा दो। कौन सा भाई, कौन सा गाना? कहते मेरा गाना लगा दो। आपने, आपका अपना भी कोई गाना है? नहीं, मेरे नाम कर दो। अरे भाई, मेरे बाप की प्रॉपर्टी थोड़ा ही आपके नाम कर। अरे यार, मेरे लिए लगा दो। हाँ तो ऐसा बोलो, ठीक है लगा देंगे। कौन सा गाना है? कहता ठोक के झोंक के बजा दो गाना। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। और जैस्मीन, सो नाइस ऑफ यू। हेतल सोलंकी, हंसा वोरा और भरत गंगाराम, वत्सला जी, सुरेखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए लौटते हैं वापस संगीत की ओर, पर ये याद दिलाते हुए कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK, yani State Bank of India UK. भाई वो वैसे तो बहुत सारी सेवाएं देते हैं लेकिन पैसे भिजवाने के लिए कहते हैं कि हम बड़े दक्ष हैं एक्सपर्ट हैं अगर आप अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं हिंदुस्तान में तो एक पाउंड के बदले टुडेज रेट इज 125.7 रुपीस 125 रुपए और 70 पैसे एक पाउंड के बदले हम दे रहे हैं भारत भिजवाइए अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इंडियन करेंसी में ये रेट चल रहा है आज हमारा और बहनों भाइयों यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द यूनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: Make your celebration special with Falcon Festive offers.
3: Soghat plain paratha, 1.6 kilos, 2 for 3.79. Shankar grated coconut, 400 grams, 1.29. Suhana son papri, 400 grams, 2 for 2. Shan masalas, 2 for 1.79. Bikano aloo paratha, 400 grams, buy one, get one free at 1.99. Hamza masala fries, 400 grams, 2 for 2.50.
2: Aur shopping ke saath paye Star Tours ke holiday packages aur Malabar Gold and Diamonds ki taraf se gold coins jeetne ka mauka. Falcon Cash and Carry. Visit 82A Syston Street, Leicester, LE12JU, 2A Rollers Hill, Leicester, LE54UN, or Falcon Supermarket, 135 Carlton Road, Nottingham, NG32FN. Happy Diwali!
4: Passports, tickets, kids' tablets.
5: All packed. But what about our phones? We'll need them for maps, WhatsApp, photos.
4: And checking in with grandma.
5: Exactly. Roaming abroad can get expensive.
4: That's why I got Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
5: So we can keep our numbers for WhatsApp and bank OTPs?
4: Yep. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
5: Holiday sorted.
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
6: To buy is an opportunity, to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
7: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place. 11,
7: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
8: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
9: Yeah, hello!
10: Lester na Little Garba Stars taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday 17th October, Bapore 1 thi 4 at Avanti Field School, Lester. 1 thi 10 varashna kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call PHL 07957477330. Masti, music and a full on Garba fun. Radio partner, Laika Radio.
11: This time of year, mom's already planning the mithai. Your auntie's counting down the days. Good thing Western Union is fast and easy because this family does not wait. Send in money directly to their bank account, mobile wallet or for cash pickup. So Diwali is exactly as it should be. Western Union, share the light like you are there. Visit participating post offices, Euro Exchange or other retail locations. Sending online, enjoy a zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply.
12: New at Pepe's.
13: Pepe's Melts.
12: Flame grilled flavor, toasted to order. Choose chicken melt with flame grilled chicken, melted cheese and flavor packed toppings in toasted focaccia.
13: Or go for paneer melt with the same Pepe-licious flavor. Choose smoky barbecue cheese or fresh tomato salsa cheese.
12: Chicken or paneer, barbecue or salsa. Your melt, your way.
13: New melts, only at Pepe's.
7: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October, half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.
14: Diwali is approaching and is your business ready? Sandhya Wholesale has your Diwali essentials covered, so stock up and get ready to celebrate. Get in touch today, info@sandhya.co.uk or give us a call on 0203 048 4848. On behalf of Sandhya Wholesale, happy Diwali.
15: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it, you just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.
16: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
17: Four beers, please, garçon!
16: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
1: Listen back to your favourite shows by logging on to likeradio.com and selecting Midlands or the mobile app.
9: आज नवरात्रि का चौथा दिन है. इस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है. मान्यता है कि माँ ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना की. प्रकाश और ऊर्जा का ये स्वरूप हमें आशा और उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. माँ की मुस्कान से उजियारा छाए, हर मन में आशा का दीप जगमगाए. माँ कूष्मांडा की कृपा बरसे, हर आंगन खुशियों से भर जाए. लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. जय माता दी.
17: Navratri special on Laika, brought to you by Tilda. Tilda Basmati. Make every celebration taste like home. Loved by generations since 1970.
8: Laika Radio.
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Laika Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Laika Radio mobile app and listen wherever you are in the world.
18: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

0: हाजिर है ये बंदा हुक्म करो हुस्न का गुलाम बैक टू बैक भाई संगीत सुनवाते हैं हम चिंतन के बाद 20 घंटे में और फिर आगे बढ़ते हैं लाइका रेडियो नेटवर्क पर ये लाइका गोल्ड के प्रसारण आप तक पहुंच रहे हैं आई एम रवि शर्मा एंड आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून और साहब ये स्टेशन
1: ये है लाइका रेडियो फील गुड ट्रैक Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

जाते हैं लोग बंबई देखने यानी मुंबई, और कुछ लोग मुंबई वालों को देखने जाते हैं। मुंबई में एक बाजार है जिसका नाम है भिंडी बाजार। अरे साहब, भिंडी बाजार को कुछ लोग चोर बाजार भी कहते हैं। अरे क्या चोर बाजार, ठगी का ठिकाना है, वह नहीं जाना है भैया कहते थे। अब आपको पता है भाई, जहां जाने के लिए लोग मना करते हैं ना, वहां जाने को मन जरूर करता है। अब अपन वहां पहुंच गए, मैं देखते हैं भाई कितने ठग हैं यहां पर। कहते हैं यहां पर जेब कट जाती है। अरे अपने आप थोड़ा ही कटती है, देखते हैं कौन काटता है। हम एक्स्ट्रा क्या कहते हैं उसको, क्लेवर। हमने थोड़ी देर में वहां ऐलान कर दिया, भैया 3 घंटे से घूम रहा हूं, हाँ किसी ने हमारी जेब से कुछ नहीं निकाला, कुछ नहीं दिया। कहते जेब खाली कर देते, जेब काट देते। ये कहना था, एक भाई आके बोला, क्या बोल रहा है? अरे क्या बोल रहा है, 3 बार आपकी जेब खाली कर चुका हूं, नकली नोट लेके घूम रहा है, वापस जा।

0: Listen to the freshest hits added daily on Lyca Radio.
1: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
2: Four beers, please, garçon!
1: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
3: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at imaginexglobal.com or WhatsApp 0758-580-18. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
0: From Great Bar to Perry Bar, Lyca Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Lyca Radio Midlands.
4: Manoranjan with Ravi Sharma.
5: और बहनों भाइयों, धीरे धीरे अब खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये भावना को समझो. भावना को, नहीं नहीं भावना की बात को समझो यार. भावना जी ने लिखा है, कहती है एक आदमी बड़ा दुखी घर पहुंचा. पत्नी ने कहा इतने परेशान क्यों हो. पति कहता है नौकरी चली गई. कहती क्यों दूसरों की नौकरी करते हो, अपना काम करो, कोई अपना काम करो. कहता अपना काम क्या करूं. पत्नी कहती है किचन में बर्तन पड़े हैं वो धो लो, फिर बाथरूम में कपड़े भी हैं और जब उनको खत्म कर लोगे ना और काम दे दूंगी. बहुत काम है. आप भी ऐसा काम करते हैं, अपना ही कर रहे हैं भाई. आपको क्या है, दखलंदाजी नहीं है कोई.

0: समझे प्यारे तेरे प्यार में लुट गए भिंडी बाजार में। पिछले घंटे में भाई जिक्र हुआ था भिंडी बाजार का, जो मुंबई वाले इसको चोर बाजार भी कहते हैं, पर आई डोंट नो क्यों कहते हैं। सुना राइट, प्रोग्राम के तीसरे और अंतिम दौर में स्वागत है आपका। माय नेम इज रवि शर्मा और बहन भाइयों, एक बजे तक ये हंसी के ठहाके, कुछ चटपटे गीत, कुछ अटपटी बातें। भाई ये सब बहुत जरूरी, आपको बताऊं, किसी ने कहा था किसको, सुरेंद्र शर्मा को, वो जो कॉमेडियन है सुरेंद्र शर्मा, हास्य कवि है, बल्कि भाई पॉइंट है, अच्छी बातें कई वैसी बातें भी करते हैं जो बड़े काम की होती है लेकिन हंसी के बहाने से। अब उनसे किसी ने कहा क्या आप ऊटपटांग बातें करते रहते हो लोगों को हंसाने के लिए। कहता है जी हंसाने के लिए तो ऊटपटांग बातें ही चाहिए, सीरियस बातों पर कौन हंसता बताइए। सही बात।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK याद दिला रहे हैं पैसे भिजवाओ भाई अपनों को भारत में, अगर आप भेजना चाहते हैं तो आज का रेट हम बताते हैं। They are giving 125.7 Indian rupees for £1. 125 रुपए 70 पैसे का रेट चल रहा है। You can transfer via branch online और भाई using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Yeah. Leica Radio.

0: कुछ तो करना पड़ेगा, हम क्या करें? अरे बताओ भाई ये क्या करें? बर्तन पड़े किचन में कर लो।
1: Feel Good Track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और बहन भाइयों, हम भी कुछ कर लें, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो एक दो बातें आपको याद दिलानी है, आप याद कर लीजिए। एक तो भाई पंजाबी लेजेंड लखविंदर वडाली जो हैं वो 16 अक्टूबर शुक्रवार को परफॉर्म कर रहे हैं। भाई बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ है, पूरा परिवार, उनके पिताश्री, उनके अंकल और भाई वो खुद भी आजकल खूब नाम कमा रहे हैं। तो क्रिस्टल ग्रैंड स्लो में उनका प्रोग्राम है, 18 अक्टूबर को है बर्मिंगम में, ICC बर्मिंगम में, और 16 को स्लो में। तो मौका लगे जरूर देखिएगा, जरूर एंजॉय कीजिएगा म्यूजिक को।
1: Artist of the week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: और बहन भाइयों, आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं शर्मिला टैगोर। बिल्कुल एकदम, जितना शर्मिला मैं हूं ना उतनी शर्मिला वो भी हैं। और साहब शर्मिला टैगोर की आवाज़ में कोई ऐसा गीत ढूंढ रहा था मैं जो थोड़ा सा फनी हो, जिसमें कॉमेडी हो। अब वो गीत मिल तो गया, बहुत ज़्यादा फनी नहीं है। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, ये शर्मिला टैगोर का नहीं था, लेकिन ये गीत शर्मिला टैगोर का है और बहुत पुराना है, लेकिन कुछ लोगों का जाना पहचाना। अरे ये दिल तुम बिन कहाँ चल रहा है भाई, दिल तुम बिन, रुको ए दिल, दिल भाई साहब कहाँ चल रहा है ये गाना।

0: भाई इसकी सुन लो, हमारी रहने दो, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, किसी हमारे ही स्टेशन की लीकेज तो नहीं आ रही है, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, आप बताओ ये वाला गाना जो मैं सुनवाना चाहता हूँ लगता नहीं, हम क्या करें, गाना था जो मैंने क्यों किया था बड़ी मुश्किल से, जरा होले होले चलो मेरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, भाई लगे रहो, हमारे पीछे तो बहुत है, इतने देखो उधार जो जिन्होंने दिया था वो उधार मांगने वाले अपना वापस मांगने वाले पीछे हैं, पुलिस वाले पीछे हैं, छोड़िए क्या रखा सच्ची बात
1: है। Like a Radio. This is Leica.

0: आ गई आ गई, फरमाइश करने वाली मशीन आ गई आ गई, पत्नी आ गई। बोल क्या चाहिए, बोल बोल। अरे बोल दे।
1: लेते सैया ओढ़नी, ओ लेते

पगड़ी मेरी चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट

0: लेदो यार लेदो ले दे सैया ओढ़नी। याद आ रहा है कुछ कौन सी फिल्म का गाना है? अल भाई इतना हम बता दें आपको, गीत संगीत प्रेम धवन की रचना।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Let me tell you the rates they are giving. भाई एक पाउंड के बदले आज हिंदुस्तानी करेंसी में they are giving 126.13 रुपीस, पाकिस्तानी 367.31, श्रीलंकन रुपए 438.95, बांग्लादेशी टके 162.76 और केनियन शिलिंग्स 172.24 और अफगानी 86.08.
1: Like a radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: And let me tell you the gold by rate. Today, the gold is... trading at the rate of 100.34 pounds.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
3: का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
0: नेत्रदान के पक्ष में थे मिस्टर राजदान, नेत्रदान आई डोनेशन भाई है? ऑर्गन डोनेशन करते ना, आंखें कहते दान करो, हाथ जोड़ हमने कहा क्षमा करें श्रीमान माफ कीजिए, भाई हम तो आंख दे देंगे लेकिन अगर जिसको आंख मिलेगी उसने किसी खूबसूरत हसीना को वो आंख मारी तो उसका क्या बिगड़ेगा, आंख हमारी हमको ही तो पाप लगेगा। भाई हम तो कहते हैं कि आंखों का काम है लड़ना और लड़ाना, आंखों का काम है लड़ना और लड़ाना, कोई तो बीच में आना चाहिए, लोगों को चश्मा लगाना चाहिए, क्योंकि अगर वो आंख मारेगा तो उसके चश्मे को पहले लगेगी चश्मा टूटेगा। बाद में तो भाई अगर किसी खूबसूरत लड़की ने वो थोड़ा सा सॉलिड सैंडल पहना होगा तो बंदा भी टूटेगा, पर पहले चश्मा टूटेगा।

0: Listen to Laika Gold 2 on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Gold 2. Laika Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Manoranjan with Ravi Sharma.
1: और बहनों भाइयों, आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया, लेकिन आपको बाय-बाय कहने से पहले एक काम की बात कहूं भाई। लोग जो है पता नहीं कहां का झगड़ा आपके ऊपर उलट दें तो बच के चलिएगा, क्योंकि इतनी परेशानियां हैं दुनिया में। कोई घर की बात को लेकर के गुस्से में भरा रहता है, कोई दफ्तर की बात लेकर के, कोई सफर की बात लेकर के। अरे साहब, अगर कोई बिना किसी खास कारण के उबलने लगे, उछलने लगे और आपको कुछ कहने लगे तो टल लेना, बच लेना, क्योंकि ये जिंदगी हंसने मुस्कुराने ठाके लगाने के लिए भी बहुत छोटी है। झगड़ा करने के लिए लोग कैसे टाइम निकाल लेते हैं।
2: आज गालो मुस्कुरा लो,
1: यही करना है, यही करवाना है, लेकिन अब जाना है। हैव अ सुपर्ब डे, बाय बाय फ्रॉम रवि शर्मा नाउ। आज गालो,

टी से दो गाने चुने हैं मैंने, दो गाने चुने हैं मैंने टी से, क्योंकि दोनों इतने खूबसूरत है. सो आई थॉट आई विल गेट यू टू लिसन टू टू सॉन्ग्स बिगिनिंग विद टी.

0: to Laika Radio 90s. 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s. This is the largest commercial Asian radio network in the UK.
1: आज नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना की। प्रकाश और ऊर्जा का ये स्वरूप हमें आशा और उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। माँ की मुस्कान से उजियारा छाए, हर मन में आशा का दीप जगमगाए। माँ कूष्मांडा की कृपा बरसे, हर आंगन खुशियों से भर जाए। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
2: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स। पेरिस जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है। स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
0: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: सबसे निराला मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: खाकरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
3: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाकरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर.
2: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
4: लाइक रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन. Bollywood's biggest 90s songs non-stop.

तो करे पेट भरे न भरे प्यार करेंगे, आँखों के अंधे आंखें चार करेंगे। गली गली ये मजनू के चेले कहते फिरते हैं कोई दिल ले ले ले ले ले ले ले ले। दिल है या कोई तरकारी है, अजी साहब ये कैसी बीमारी है। काले कलोटे भौरे घूमे डाली डाली, वो छी छी डाली डाली। अब

0: बुल्लू बुल्लू पाली
1: Another SD Burman hit, Rajinder Krishan. And the letter is W, or V, I should say.
2: SD Track of the Hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
3: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है
4: लाइका रेडियो नाउ इन मोर प्लेसेस देन एवर बिफोर बर्मिंघम ब्रैडफोर्ड हडर्सफील्ड एंड लीड्स

0: pitch perfect. That's what I call it. And that happens to be none other than Kishore Da. And can you believe ki ye gana mere naina Sawan Bhado, Rafi sahab, obviously, jab koi raag adharit gana ya to high pitched gana aur ek difficult gana jo hota hai, to pehla naam hamesha Rafi sahab ka hi aata hai zehen mein. Lekin yahan pe Rajesh Khanna ji ne guzarish ki, kaka ji ne R.D. Barman ko kaha, Panchamda ko kaha ke please aap request kijiye Kishore Da ko ke wo please gaayen ye mere liye. To phir Kishore Da ne accept kar liya aur badi mehnat karke inhone ye gana gaya film Shiv Ranjini, Mehbooba film ka. That was R.D. Barman. And then baap ne kaun sa gana 1971 mein Sharmili film ka. Oh wow, khilte hain gul yahan. Aap sab bade prabhavit ho gaye ye gana sunkar. Ye maine dekha aapke messages se. Abhi iski ek kahani aisi hai ke kuch dost baithe the pub mein, sare musicians, and main koi expert to nahi hu, lekin jo mujhe knowledge milta main aapke sath share karta hu. So wo do argue karne lage aur kehne lage ke ye gana jo hai khilte hain gul yahan. हम लोग म्यूजिक प्रैक्टिस से आ रहे थे तो उन्होंने पब में बैठ के आर्गुमेंट शुरू कर दी खिलते हैं गुल यहां बोलते कि ये राग भीमपलासी नहीं है ये राग धानी है सो दोनों ने फिर बैठ के आर्गुमेंट की एंड देन जिसने कहा था कि ये भीमपलासी है उसने प्रूव करके दिखाया क्योंकि दोनों राग में कैसे बोलते पेंटाटोनिक राग मतलब पांच सुर जो होते हैं तो धानी के राग है सा फिर कोमल गा फिर मा और फिर आई थिंक इट इज पा कोमल मस्ट बी एंड नी कोमल नी ओके तो पा कोमल है और नी सो अभी पांच सुर हुए ना सो सा कोमल गा एंड देन मा देन कोमल पा एंड नी सॉरी मैं थोड़ा टेक्निकल हो रहा हूं पर समझ पड़ेगी आपको और भीमपलासी इज आल्सो यूजिंग द सेम फाइव नोट्स बट इसमें आरोह और अवरोह होता है दैट मींस असेंडिंग और डिसेंडिंग अब डिसेंडिंग में भीमपलासी यूजेस सेवन नोट्स नॉट फाइव क्योंकि वापसी में इट यूजेस डिसेंट में द शुद्ध धा और शुद्ध रे जो सुर मिस हो रहे थे ऑन going ascending wo hi sur wo vapsi mein include karte hain and that is why ye gaane ke andar these notes have been utilized and that's why it proved that it is Bhimpalasi so I thought jinko samajh padti hain hamare Anil Bhatt jaise log wo samajhte hain raag ko to he will understand what I mean to say but aap itna hi janiyega ke जो आर्गुमेंट हुई थी धानी और भीमपलासी दोनों पेंटाटोनिक राग्स हैं लेकिन वापसी में वो डिसेंडिंग में वो भीमपलासी सात सुर यूज करते हैं बस इतना ही अब किशोर दा के बारे में ही वाज वेरी अंडरएस्टिमेटेड एंड कहते थे लोग के ही इज नॉट ट्रेन्ड सो कैसे वो गाएंगे लेकिन लुक एट हिम इट्स ही वाज गॉड सेंट इनमें एक कला थी He used to absorb the notes and he used to sing. Unko poochho to he didn't know kaun sa raag hai, lekin wo notes chhodte nahi the. Unko jaise gana bataya jata tha, usme variations bhi karte the, lekin he would sing it exactly raag adharit. Next gana jo hoga, it's from a film called Uljhan. Aur Uljhan film mein ek itna pyara gana, apne jeevan ki uljhan ko kaise main suljhaun. That is Ahir Bhairav. Usme ek geet hoga. Uske baad hoga zindagi ke safar mein. Wah, wah, wah, wah. Zindagi ke safar mein. Aapki kasam ka gana jo hai. Zindagi ke safar mein. Guzar jate hain jo maqam. Wo. To that is in Raag Bihag. And then hum jayenge on Raag Pahadi. कांची रे कांची एंड देन उसके बाद परिचय फिल्म का एक गाना है सारे के सारे गामा को लेकर दैट इज अल्लैया बिलावल उसके बाद देखेंगे जैसे वक्त रहा तो मैं और सुनाऊंगा आपको आई होप यू आर एंजॉयिंग राग आधारित सॉन्ग्स ऑफ किशोरदा वैसे मेरे पास लिस्ट है ऑफ अबाउट 30 सॉन्ग्स सो कभी ना कभी हम सुना देंगे आपको मैं हूं पाली ब्रह्मा ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स On 1035 medium wave DAB, Alexa, Google Home, and LaikaGold.com. And also on Laika Radio Midlands.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can fetch you up to 125.2. It has just changed to 125.2 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Good afternoons with Bali Brahmbhat. Bali Brahmbhat is sponsored by Gemin Foods. Tamara tea time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe Tamara najikna Asian shops ma.
3: Did you know Kavita Krishnamurti won her first gold medal in a music competition at just 8 years old? A remarkable talent from childhood.
4: Nimura, Nimura, Nimura. Kavita Krishnamurti, celebrating Diwali, 1st November at Royal Albert Hall, London. Tickets at Box Office. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.

0: ਸੌ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: ਓ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਰ ਨਟ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਮੇਡ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਓ ਅਵੇਲੇਬਲ ਐਟ ਯੂਰ ਨੀਅਰੈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ
2: Darling, it's my last season of Coffee with Karan. Why would I do anything controversial? Just trust me. Yeah? Okay. Yeah. Love you too.
3: Coffee with Karan Season 9. Watch it from 14th October. Only on Jio Hotstar.
4: आज नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना की। प्रकाश और ऊर्जा का ये स्वरूप हमें आशा और उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। माँ की मुस्कान से उजियारा छाए, हर मन में आशा का दीप जगमगाए। माँ कूष्मांडा की कृपा बरसे, हर आंगन खुशियों से भर जाए। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
1: Navratri special on Laika, brought to you by Tilda. Tilda Basmati. Make every celebration taste like home. Loved by generations since 1970.
5: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: भानु गुप्ता, रिहर्सल चल रहा था, द गिटारिस्ट भानु गुप्ता, उन्होंने गलती से एक कॉर्ड बजाया विच वॉज नॉट सपोज टू हैव बीन प्लेड, वो गलत कॉर्ड बजा और सब लोग स्टूडियो में हंसने लगे और पंचमदा ने कहा नहीं यही सही रहेगा और ये पीस है टन टिंग टंग, वो गलती थी लेकिन आज हिट हो गई।
1: Cranking out the biggest hits for the capital. This is Laika.
0: Raag Jhinjhoti. Film Parichay. R.D. Barman and lyrics by Gulzar.

0: And what a beautiful song from that beautiful film, जिसमें सब गाने हिट थे, दिल का क्या कसूर. और रवि शर्मा जी यहाँ स्टूडियो में पधारे तो मुझे लगा कि मैं अभी मेरा शो शुरू होने वाला है.
1: नहीं, मैं तो तेरे लिए जा भी दे दूँ बाली भाई. आपको पता है कितने बार दे चुका हूँ जान आपके लिए
0: मैं. वो तो मुझे मालूम है, मैं भी तो जान देता हूँ आपको हर रोज.
1: आप भी रोज जान देते हैं.
0: हमारे इतने अच्छे अच्छे गेस्ट आप लेकर आए हैं, प्लीज आप
1: पंजाब लुधियाना से इंडिया से बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर भी हैं.
0: हाँ जी.
1: और म्यूजिक प्लेयर भी है.
0: आपका नाम सर?
2: जंगा कैस्टर.

0: प्यार ही प्यार। किशोर कुमार ने कंपोज भी किया, किशोर कुमार ने गाया भी, शैलेंद्र जी ने लिखा। दूर गगन की छाओं में, व्हाट अ फिल्म, व्हाट अ फिल्म किशोर दा।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Are you listening? Leica Radio is now available across Birmingham on DAB.
0: थोड़ा यसुदास और हेमलता हो जाए नी। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, वाह क्या गाना है। खुशियां ही खुशियां हो, रविंद्र जैन ने लिखा, रविंद्र जैन ने कंपोज किया, जैसे कि द प्रीवियस सॉन्ग में किशोर दा ने किया था।

0: And the winner of the competition, Sanjeev Gupta.
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
2: This is Leica.
0: Sanjeev Gupta ji, congratulations for winning two tickets for Crazy for Kishore. Muhammad Rafi sahab aur Kishore da, aapke diwane.
3: तेरा जलवा तौबा है तेरा जलवा
0: कल तक के लिए इजाजत मैं हूं बाली ब्रह्मभट एंड वी गॉट सैंडी शाह कमिंग नेक्स्ट ऑन ड्राइव टाइम एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पे राजपतन

0: आज नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना की। प्रकाश और ऊर्जा का ये स्वरूप हमें आशा और उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। माँ की मुस्कान से उजियारा छाए, हर मन में आशा का दीप जगमगाए। माँ कूष्मांडा की कृपा बरसे, हर आंगन खुशियों से भर जाए। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
1: Navratri special on Laika, brought to you by Tilda. Tilda Basmati. Make every celebration taste like home. Loved by generations since 1970. A Laika Radio Classic plays now.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: बात क्या है बंटू? अरे बोलो काक बसुंडी।
3: मेरठ की क्योटिक फैमिली में आई पिक्चर परफेक्ट दुल्हन।
4: अरे नहीं, क्या हुआ?
5: कैसे कैसे हो गया?
3: और लाइफ बन गई हेवन।
6: भाभी, डायन है।
3: But wait, ये भाभी है या डायन इन डिस्गाइज?
7: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना? लो आ गई।
8: नई नवेली, स्टारिंग यामी गौतम धार, प्रोड्यूस्ड बाय आनंद एल राय। नई नवेली इन सिनेमाज अक्टूबर 16।
7: आप सिर्फ मजे लो।

0: ये स्वरूप हमें आशा और उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। माँ की मुस्कान से उजियारा छाए, हर मन में आशा का दीप जगमगाए। माँ कूष्मांडा की कृपा बरसे, हर आंगन खुशियों से भर जाए। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
1: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स। पेरिस जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है। स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
2: Like a radio. Pay close attention.

0: everyone's favourite ride, the Radio Wally Roller Coaster.
1: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
2: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
3: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल Mantra.
4: Yes, we're in the final. I know. I still can't believe it. We're actually going.
5: Flights booked, tickets sorted. But hang on, how are we going to use our phones over there? We'll need them for tickets, maps, photos, and obviously sending the celebrations home.
4: Simsy, data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available. And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs.
5: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in 3 minutes.
4: Come on, let's go win this.
6: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simsy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simsy.com. Terms apply.
7: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
8: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
7: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स

0: है लाइका रेडियो
1: लेस्टर्ना लिटिल गरबा स्टार्स तैयार थे जाओ KDR इवेंट्स एंड बीच प्रमोशन प्राउडली प्रेजेंट्स किड्स गरबा 2026 विद लाइव फ्रॉम इंडिया सैटरडे 17 अक्टूबर बपोरे 1-4 एट अवंती फील्ड स्कूल लेस्टर 1-10 वर्ष ना किड्स माटे एंट्री जस्ट £5 टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट सोर्स और कॉल बीचेस 07957477330 मस्ती म्यूजिक एंड फुल ऑन गरबा फन रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो
2: Sunshine, skyscrapers and souks.
3: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
2: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
3: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
2: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
3: Southall Travel. At all protected.